स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय केटा नान चिकित्सा शिक्षा भवन 2075 तथा बालकों तथा एक खंड क बमोजिम कमती में 300 शैया को शिक्षण अस्पताल संचालन को प्रक्रिया विश्वविद्यालय तत्काल

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै वित्तीय कोजना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वपक्ष अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं

0: जहाँ पर व्यक्ति का भ्रमण था विराज के सब हमें दूरी पर प्रमाण 있지? 아, 그런 말을 받겠다고 바로 말하겠지. 아, 저는 아침에 저는 아침 사실 뭐라고 했었어요? 뭐가 시리아 정신 아끼든가 시리아 정신 아끼든가 아, 밖에서 아, 다 문화한 코너에서 말하겠지. 그러니까 코너에서 말하는 다리만이 아라 다 제시에서 제시에 루폰 받아니 아버지 자랑에 루폰 받은 제가 제시에 아라 다 달고 다 잔디 이 다 잔디 그러나 다 잔디 좀 보았어 와라 참 바야지 보았어 와라 빠졌던가 제대로 알지 같아요
1: सरकार से पारित कांग्रेस पहल हुआ सरकार हमारे समर्थन फिरता रहती कांग्रेस पांच मंत्री सामने राजीनामा सिद्धवाद नेपाली कांग्रेस संसदीय दल का सचेतक तमस श्रेष्ठ मुख्यमंत्री जीत नारायण आचार्य मन सरकार हमारे समर्थन फिरता पदर सहित मंत्री सामूहिक राजीनामा बुझेर भइथे राजीनामा बुझेन मन्त्रीमा शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री संस्थापक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धरेन्द्र कार्की उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रशान्त विक्रम नेउपाने सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजयन्ती सेना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारबाट केन्द्रीय राजनीतिमा समीकरण परिवर्तन परिषद लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेस मुख्य कांग्रेसका मन्त्रीका राजीनामादेखि सरकारमा सिपाही कांग्रेस सरकारमा सिपाही अब लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले हो नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा र संयुक्त सरकार गठन हुन तयारीका लोकमन्त्रीको खण्ड नियुक्ति भयो मन्त्रालय पाँच पटकका विषयमा एमालेको नेकपाका नेतृत्व बीच छलफल हुन जनवादी खबर बाणसिंह प्रकाश गुप्ता पठकबाट थारू समुदायका पहिला त्रिपाठको रूपमा महाजिना कुरीले एक बडा स्थान गढीमा भव्य रूपमा मनाइने भएका सत्य सञ्चार कैलालीका आयोजनामा आज धनगढीमा पहिला थार लोकमा सहीमा चाहिँ एक वर्षदेखि धनगढीमा पहिले मनाइन भइरहेको संसारको अध्यक्ष सुनिता चौधरी सानो एक वर्षदेखि निर्भर कार्यक्रम आयोजना गरेका धनगढीमा कुरी चौकमा पहिले मनाइन तयारी भइतिर चाहिँ यी वर्ष पहिले त्यौहार पदवी प्रदेश आज सहरीमा पहिले त्यौहारको तयारी तथा भव्य रूपमा सम्पन्न गर्दा निर्णय समिति तथा उपसमिति गठन गर्दा अध्यक्ष चौधरी सरकारी आफ्न संयोजक पत्रमा कुनै अस्थायी नम्बर आयोजक समिति गठन गरे महाजनेलवाटी मूल आयोजक समितिका सह संयोजकमा थार लेखक सङ्घ नेपाल अध्यक्ष कविता चौधरी सदस्य सचिव महासचिव सञ्चारका सचिव तारा चौधरी रहरबाटी उसैक सङ्घ संस्था समूह फेरहरबाट उसैका आजका कचहरीमा चाहिँ जिम्मेवारी पाठ थार भइसकेका प्रसै कार्यक्रम सफल बनाएका उप समिति भएको ठान भइकेर कैलाली श्री प्रेम चौधरी खबर पठाइनुबाट अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको बारे बिन्दु सेरे

0: viaretti i tecnico a quelli che stanno con i fratelli per la sensorica di vantaggio per una passa per la Santa Rius che c'è con i vinti per la Bohati in senso come spazio di una riparata e la persona Santa Rius in seri a dinta sarei in medici ovvero su te da dare di questo con la con i fratelli con i fratelli con la coppia multilaterali in la Isteri perfect for Epsi, Dandy, Idis and Sadis, Tanya for Sansa, and the test of the fire, Talk of the Mutation Sadi, the Peter Pana, Martha, that Margaret, the Father, that Peter Peter Pata, Peter Rua, Motel Santa Peter, given a pay out of the Rua, Yada, the Rose for the Sansa, by the Titan of the Missy Pata, for Sansa, the Hanikon, the Sansa, the Sansa, the Sansa, the Sansa, the Sansa, the Sansa, the Sansa, the Sansa, the Sansa, the Sansa, पश्चिमा उसी बैरिज का पुल था उत्तर पश्चिम महिला राजमार्ग से 200 मीटर क्षेत्र का करना प्रशासन साधारण भवन पशु आदि को पूरा पालना पर तथा अत्यावश्यक काम है तो घर पर है दीदी का है और दिखल का
1: मुख्य संदेश एक तरह धान बाली में रोकियां निलागस बाली सप्रस कराव देश के पास कोई नौ मासा गट प्राण का महारिन पूजे के गिरता वो सुनसरी का अत्यमान का समाप्त करेगा कृष्णा पाचा और प्रसन्न हिसाबलत पंती के पास है जिला प्रशासन कार्यालय सुनसरी रोकपक्षों राजमार्ग अंतर्गत कोशी तारिक से इतहारी पकड़ी चुप समा का भारतीय आदेश जारी करेगा Thank you.

0: जन खाई जाए स्वस्थ पाए सुरक्षित परिवार।
1: रेडियो कृष्ण द्वारा संक्षिप्त जारी संदेश
2: ऐसे ही सब कुछ नहीं करेगा।

0: के विश्वासघटना को सही जानकारी बैठक और लखन उपचार केन्द्र कर्णधार बैठक स्थान बैठक आधिकारिक पेज स्टेट बैंक नेपाल डट ओआरजी में जाकर आवश्यक जानकारी लिने क्षेत्र छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालका साथै वित्तीय कोरियामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदंश अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
1: आफ्नो भाषा आफ्नै समावेशी रेडियोको साझा आवाज

pregunta que está también lo que no tiene a saber de crítico sacarle alguna sanidad en corte de avanzar después de la primera es que se llama la de tal y con esto para que piense no haya propia tanto con el color de la práctica o cosa pero no haya cercana que tenga la de algo se va a tratar la parte y exanto que se va a tener algo se puede decir cosa llegan a este canal y aceptar más chicas a combatir para el cuarto marco y los va a aceptar que ocho que serán chicas a pesar de la vida más de que se aceptar que la medical सुपरिटेंडेंट समक्ष शहर राज्य ने मकुजाम की उन्हें भी सुरक्षित करने वातावरण सुनिश्चित करने के लिए समस्या का बाहर करना वस्तु की स्पष्ट पारिका से कप्तान आठ घंटे चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद राम माथी पृथ्वी चौहान का साथी अन्य स्वास्थ्य कर्मी माथे अखिलों का अस्पताल में तोड़कर भाई पची चिकित्सक हारू अकस्मिक सेवा बैंक का सेवा पंडा करे अंतरण माथे स्वास्थ्य मंत्रालय को अंतरण पची वार्ता में आवश्यक का चिकित्सक आदि प्रशासन समेत को साल पर निश्चित अपील कर पची सामने घटना में को निर्णय में पूरी कहा इस घटना को विरोध नेपाल चिकित्सक संघ पुलिस के स्वर्ग का अस्पताल तथा

0: సామాజిక పరిస్థితుల అధ్యయనం సాంప్రదాయిక సూచన నెట్వర్క్ సీఎన్ఎన్.
1: अपने सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन ने काठमांडू में व्यापारी को साझा खबर संग्रहण साझा खबर में अब बाकी खबर प्रदेश प्रदेश का 126 तालिका मध्य 109 तालिका में बाल बालिका में शीघ्र कुपोषण को समस्या देखिए स्वास्थ्य सेवा विभाग अंतर्गत को परिवार कल्याण महाशाखा ने सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार प्रदेश प्रदेश का 109 तालिका में शीघ्र कुपोषण को समस्या देखा 18 तालिका स्वस्थ रहेका मात्र छन्.
2: शीघ्र कुपोषणको दर भन्नाले उचाइको तुलनामा आवश्यकता भन्दा कम दर भएका बाल बालिकाको प्रतिशतलाई बुझाउँछ. सामान्यतया 5 वर्षका बाल बालिकाको तौल र उचाइको अनुपातलाई हेरेर कुपोषणको अवस्थालाई मापन गरिन्छ. मधेस प्रदेशमै सबैभन्दा बढी सदैव हरिपुर नगरपालिकामा 8.8% बाल बालिकामा कडा किसिमको कुपोषण देखिएको छ. हरिपुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख नवल किशोर रायका अनुसार भर्खरै पोषणको लेखाजोखा गर्दा तालिका भित्रका मुस्लिम र दलित बस्तीका बाल बालिका बढी उपस्थित पाइन्छ.

0: प्रत्येक सरकार ने प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था हलवा जस्ते उपचारात्मक पोषणाहार आरयूटीएफ निःशुल्क रूप में प्रदान करते आई कड़ा किसिम को कुपोषण देखा पड़े पालिका अब उक्त आहार मात्रा भर में भरी पालिका अवसरता देखा सचेतना जगाने पोषणयुक्त खानेकुरा खाने न सकने परिवार सहायक करने तथा उन्नी आय आर्जन में जोड़ने तर्फ प्रस्तुति करना आवश्यक देखिश प्रभावित समुदाय ने पूजी भाषा में उन्नीस में संचार मध्यम जनचेतना जगाने अभिभावक जिम्मेवार बनाने काम करद जनार्दन खत्री सीआईएन रेडियो एकता
1: सरकारले जो

0: आपको सपना को पक्ष में निर्णय करूं
1: तलाक खुला पूरा करूं समाधान लागू पदार्थ होगा
0: लागू पदार्थ में तेरे कारा बसो स्वस्थ रहो उजारो भविष्य बसो
2: रेडियो द्वारा जमी कुमारी संदेश।